0: stay tuned.
1: 88.4 FM.
2: आपका अपना रेडियो, रेडियो में 88.4 नेटवर्क।
3: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780, व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
4: Assalamualaikum, I'm Siri Hatak, the Ambir Kilika Rakna. Akhtar Chikalaba, the Jimmy Musam Show, Nazama, Peba Chaudali. Uma Deir Ziat Mustalif Kisam Kri Cream Istimalgar. Umatai Pihi Result Nashumila. Evav Reskara Kredio Bandime Ekram Nala Program Avredo. Isma Kri Cream Havale Sarai Habare Kavali. Namaham Arusa Shopping Center Na Isma Kri Cream Raval. Masha Laiva Hafta Istimal Sara Zama Pe Narmi Safa Ahai Stashwe. कजमा आवाज सोख हम चर्द चर्द आवरी न्यूज़ली जरूर इश्मा करी क्रीम इस्तेमाल करें। इश्मा करी क्रीम पेच और गले न इलावा बदन में दिहारश भी इस्ता से बदन और सरवस्वजी या मुश्मान पेम पर देवाजी रेशी जराशी दो टोल मसलों के जबरदस्त

जी बिल्कुल दस्तूर जी, यानी मतलब परुन रसा जुगम दे मुसलसल जुगम दे मुलाकात की ग्रीष्म कॉस्मेटिक पाकिस्तान प्रोग्राम के, चूंकि मशरान जुगम दी आप बिजी दी यानी इकराम सिर्फ जुगम दी बिजी दी नौ दी तो वजना बस मुंगे चुकम दे रेडियो प्रोग्राम दोबारा बिल्कुल तासो पता दे छी प्रोग्राम तासो बिल्कुल की ग्रीष्मा कॉस्मेटिक्स मुख्तलिफ प्रेजेंटर दर तरजी और मुग्धा हां चिकला मुकाम लेवीगी नो मुंगे रजू दे सिर्फ और सिर्फ दे यू पैगाम सरा चागा पैगाम दे ग्रीष्मा कॉस्मेटिक पाकिस्तान खज बिल्कुल मुख्तलिफ रेडियो स्टेशन बने मुंगे प्रोग्राम अनेर दे तासुमा आवाज कम रेडियो बांधे और तासुमा आवाज चुकम दे रेडियो अमन करक बाने अवरे या दिन लवा लकी 88 बाने मा तासु आवाज अवरे और चरत के अवरे तासु बिल्कुल मुंगा इन्फॉर्म कवली से जरूर या दिन लवा तासु आवाज मा अवरे पर टांक रेडियो बाने या दिन लवा ग्लोबल 91 डीआई हान रेडियो बाने या दिन लवा उम्मीद रेडियो चार सदा जलमी रेडियो नौशहरा या दिन अलावा आवाज एफएम अटक रेडियो माने मा तासु आवाज अब रही बिल्कुल तासु मा जरूर इन्फॉर्म कवलिशे मुंग तो मैसेज कवलिशे मुंग तो कॉल कवलिशे

0: Radio Aman Network, News and Information Station.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क
4: एक साफ सुथरा घर, चमकते बर्तन और ताजगी से भरपूर एहसास, हर घर की जरूरत और उस जरूरत का भरोसा है कमांडर। रोजमर्रा की जिद्दी दाव हो या बच्चों के खेल कूद से गंदे हुए कपड़े, कमांडर वॉशिंग पाउडर अपनी ताकतवर सफाई के साथ कपड़ों को बनाए ज्यादा साफ, ज्यादा रोशन और खुशबूदार। किचन में चिकनाई और मैल का मुकाबला अब मजीद आसान, कमांडर डिश वॉश। बर्तनों से चिकनाई को मुअस्सर तरीके से साफ करें और बर्तन को दे शानदार चमक, ताकि आपका किचन हमेशा साफ और खूबसूरत नजर आए। और जब बात हो जाती नगदाश्त की, तो कमांडर ब्यूटी सोप दे ताजगी, नरमी और दिलकश खुशबू का एहसास। हर नहाने के बाद खुद को महसूस करें पहले से ज्यादा तरोताजा और पुरएतमाद। मियार सफाई और एतमाद का नाम कमांडर। कपड़ों की बेहतरीन सफाई के लिए कमांडर वॉशिंग पाउडर। बर्तनों की शानदार चमक के लिए कमांडर डिश वॉश। रोजाना ताजगी और नरमी के लिए कमांडर ब्यूटी सोप। आज ही कमांडर प्रोडक्ट्स को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं और फर्क खुद महसूस करें। हर घर का एतमाद, हर दिन कमांडर की बेहतरीन सफाई। तो पता याद रखिए, रमजान मार्केट, दुकान नंबर 28, प्रोप्राइटर अजब खान के साथ इस नंबर पर भी राबता कर सकते हैं, 0313 91 27 273।

0: तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशिया, हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है, वो जो कुन-फ़यकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा।
2: अनोखी वजह है सारे जमाने से निराले हैं ये आशिक, कौन सी बस्ती के यारब रहने वाले हैं।

0: तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात, हमारे साथ रहिए।
1: जाहिर की आंख से न तमाशा करे कोई, हो देखना तो दीदाए दिल वाह करे कोई। अड़ बैठे क्या समझ के भला तूर पर कलीम, ताकत हो दीद की तो तकाजा करे कोई।

तो बिल्कुल जनाब, किस नेचर्स पाकिस्तान का ये प्रोग्राम आप समाज फरमा रहे हैं। तो जनाब देखिए, आपके इर्द गिर्द जो है ना बहुत सारे आपको प्रोडक्ट्स कंपनियां देखने को मिलेंगी, लेकिन किस नेचर्स पाकिस्तान का एक अलग मकाम है, एक अलग सोच रखता है किस नेचर्स पाकिस्तान। तो बिल्कुल जनाब, अगर आपको कोई भी मसला है, आप ब्यूटी के हवाले से, खूबसूरती के हवाले से हमारी कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो भी आप अपने किसी भी करीबी कॉस्मेटिक स्टोर, जनरल स्टोर से नाम लेकर तलब फरमा सकते हैं। इसके अलावा जो केसन का ताकत प्लस फार्मूला है जनाब, आप ये भी अपने किसी भी करीबी कॉस्मेटिक स्टोर या जनरल स्टोर से नाम लेकर तलब फरमा सकते हैं और अपने आप को सेहतमंद बना सकते हैं। बिल्कुल जनाब, चिकम द केसन ताकत प्लस फार्मूला दा से प्रोडक्ट दे चेतासो, मतलब कमजोरी महसूस को अक्सर खोयान दो दाडी रजात मसले भी अखपल करीबी कॉस्मेटिक स्टोर तलाट से, जनरल स्टोर तलाट से खबर पाकिस्तान पूरा ठग से आस पास इलाके चेरता हम करीबी कॉस्मेटिक स्टोर भी या जनरल स्टोर भी रादा केसन कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान क्रीम दा का फेस वॉश दा का शैम्पू दा। बिल्कुल जनाब, केसन शैम्पू हेयर ऑयल दा दा से शयान दी दा हम ता सु यूफर दी इस्तेमाल के भी बता सक पलवाई चेनस भाई ना कोडीर बेहतरीन रिजल्ट दा। और सर से खबर वगु दा केसन कम शिफाए दर दा अक्सर मा खबर अवल दर दा वकड़ चकोर चे मशरान वी ता सो मतलब चे अलमूंस कवी औ दर्दुन वर तके जिस रकूत नशित ले अहो दा पर हम दा डेर मजेदार शायद केसन चे कम शिफाए दर दे अक्सर चे कम दा फलिज मरीजान भी अहो दा हम डेर मजेदार शायद जी केसन शिफाए दर दा हम ता सखपल करीबी कॉस्मेटिक स्टोर या जनरल स्टोर ना खली ना मरता आखले और ता तलब कवल से जनाब। दिन अलावा चे द केसन ग्लूटावाइड क्रीम दा या केसन हैंड एंड फुट क्रीम दा या दासे केसन चे कम नाइट क्रीम दा या ग्लूटावाइड क्रीम दा दासे को केसन चे खबर वो को समझने क्रम केसन 32 प्रोडक्ट थी केसन कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान पंचला चे नन मोद मेहमान खसूसी जोड़ वो दरता आ वो केसन ताकत प्लस फार्मूला इंशाल्लाह ब्याज चे कम प्रोग्राम होने अभी आगे चे बदा नूर प्रोडक्ट्स बंदे हम खबर को दा चे कम केसन ताकत प्लस फार्मूला दा दा इंशाल्लाह तासु इस्तेमाल वे तासु बेहतरीन किस्म रिजल्ट हम सर मिलावेगी तासु खपल का करीबी कॉस्मेटिक स्टोर इज इन स्टोर न बखली नाम मरता आखले और तलब कवल है सो। बिल्कुल जनाब, दा समंग नन प्रोग्राम और प्रोग्राम टाइम हम बिल्कुल असर खत्म दे इंशाल्लाह इंशाल्लाह तासरबा सबा की जी मुलाकात। बिल्कुल जनाब, आप लोगों के साथ कल होगी मुलाकात। आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। हम मुसाफिर तुम मुसाफिर अलविदा, हम मुसाफिर तुम मुसाफिर अलविदा, जिंदगी में फिर मिलेंगे जब कभी मौका मिला। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगेबान एंड अस्सलाम वालेकुम।

0: Radio Aman Network, News and Information Station. Welcome to Radio Aman 88.4.
1: You are listening Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: एक साफ सुथरा घर, चमकते बर्तन और ताजगी से भरपूर एहसास, हर घर की जरूरत और उस जरूरत का भरोसा है कमांडर। रोजमर्रा की जिद्दी दाव हो या बच्चों के खेल कूद से गंदे हुए कपड़े, कमांडर वॉशिंग पाउडर अपनी ताकतवर सफाई के साथ कपड़ों को बनाए ज्यादा साफ, ज्यादा रोशन और खुशबूदार। किचन में चिकनाई और मैल का मुकाबला अब मजीद आसान, कमांडर डिश वॉश। बर्तनों से चिकनाई को मुअस्सर तरीके से साफ करें और बर्तन को दे शानदार चमक, ताकि आपका किचन हमेशा साफ और खूबसूरत नजर आए। और जब बात हो जाती नगदाश्त की, तो कमांडर ब्यूटी सोप दे ताजगी, नरमी और दिलकश खुशबू का एहसास। हर नहाने के बाद खुद को महसूस करें पहले से ज्यादा तरोताजा और पुरएतमाद। मियार सफाई और एतमाद का नाम कमांडर। कपड़ों की बेहतरीन सफाई के लिए कमांडर वॉशिंग पाउडर। बर्तनों की शानदार चमक के लिए कमांडर डिश वॉश। रोजाना ताजगी और नरमी के लिए कमांडर ब्यूटी सोप। आज ही कमांडर प्रोडक्ट्स को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं और फर्क खुद महसूस करें। हर घर का एतमाद, हर दिन कमांडर की बेहतरीन सफाई। तो पता याद रखिए, रमजान मार्केट, दुकान नंबर 28, प्रोप्राइटर अजब खान के साथ इस नंबर पर भी राबता कर सकते हैं, 0313-91-27-273।
4: आपका अपना रेडियो, रेडियो में 88.4 नेटवर्क।
5: बीमारी हक दे अवेला जी सुनत अमल दे, अवेला जी सुनत अमल दे।
6: ओस कचेरे तासु तदा से अमराज भी चितासु वरना ढेर परेशान आयो और ढेर गर्जिदली कड़ी दली यो, ढेर गर्जिदली कड़ी दली यो।
5: नो बिल्कुल मायूसके गई माँ, मायूसके गई माँ। अलशिफा दवा खाना शवाल मार्केट टांग सिटी ता तशरीफ रावड़े और द हकीम मौलाना नूरुल हुदा साहब ना पल इलाज तरला सकवले शे।
6: और दोनों मालूमातों दे पारा पदक नंबर कॉल कवले शे
5: 0319-55-23-404।

0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन। वेलकम टू रेडियो अमन 88.4। यू आर लिस्निंग रेडियो अमन नेटवर्क।
1: वी गॉट मोर हिट्स फॉर यू, सो स्टे ट्यून्ड।
2: 88.4 FM।
3: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनारसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
4: आपका अपना रेडियो, रेडियो 88.4 नेटवर्क।

हवज स्किन पॉलिश के साथ इश्मा वॉशिंग पाउडर प्री, इश्मा हर्बल ऑयल के साथ इश्मा वॉशिंग पाउडर प्री, इश्मा विटामिन सी सीरम के साथ विटामिन सी ब्लीच बिल्कुल फ्री। हाँ माशाल्लाह जनाब वजीखा इंशाल्लाह।

अस्सलाम वालेकुम भाई जान, हाउ आर यू? मैं जितना आपका शुक्रिया अदा करूं इतने कम है भाई। मैं आपको अप्रिशिएट करती हूं कि तुमने हमारे लिए नो टेंशन जबरदस्त कंपनी इंतखाब किया है। मेरा डेरे मन ना खुर खुशहाल है, लेदर मन है, इज्जत मन है। नो टेंशन सस खुल कंपनी दे हसी सिमलवे सी यूज कवे सी नूर तो मशवरे वेर के नो टेंशन इस्तेमाल के रवाय खले सी पूर्ण तो रिजल्ट मिले विशेषा। दुआ हो हर वक्त ओ के मनाते हैं अल्लाह दे पा पल इज्जत के वो सदामीन सो ममीन से सराज मंगा टोले फुयंदी रुण सिखा से मनाल का जिसको थैंक्स आई एम फोजियार मैंने से लख दवने ओ के जी पीर साबिर शाह बाबा बाजार से फैमिली शॉपिंग सेंटर से नो टेंशन कॉस्मेटिक्स ऑफ पाकिस्तान तमाम प्रोडक्ट्स मिले विशेष देने लवासी असगर जनतो से रहला जन मरहुम से हम मिले विशेष इब्राहिम पाकिस्तान तमाम प्रोडक्ट अवेलेबल दी मिलाबद्र मार्केट की पहर जीन की अवेलेबल दी फरीदुल्लाह भाई सरा बिलाल मार्केट के सी बन रोटांग बिलाल मार्केट के मिलावे शिखा।

अच्छा गुड मासदान सलाम, कैसे हो? शो इज वेरी नाइस, आई एम रिदहान। अच्छा है चे, नो टेंशन का शो नाइट को करते हो, वरना अगर 2 बजे होता तो क्या करते? अच्छा सर, अच्छे बोले घंटा शो न क्यों करना ऐसे नेटवर्क चार ने के ओगरे के ना सीना से खाल दे और नहीं मतलब आ रही से प्रोग्राम ही हफ्ते पर ऐसे खा